एक गऊ दे दी। पंडित जी साडे वालों के तुहाडे लिए गऊ दान है, क्योंकि यह भी दान बड़ी महत्ता रखता है। पंडित जी ने गऊ मिल गई, पंडित जी गऊ लेके आ गए। जिस वेले आए एक तट ते, हुण इस नदी तो पार होने, पार ले जान वाला बेड़ी दा मला साध संगत ओ भी पंडित ओ भी ब्राह्मण है। कहिंदा भाई मैनू पार ले चल। अगो जवाब की मिले है, कहिंदा भाई वेख मैं जिसनू भी पार ले जाना उहदे कोल मसूल टैक्स किराया जरूर लेना, कर जरूर लेना, सत्संग ध्यान देना। ये ब्राह्मण के पंडित कह लगा भाई कर देन जोगा मेरे कोल तेरे वास्ते कुछ नहीं, एक गऊ है ते तू भी ब्राह्मण है, मैं नहीं ब्राह्मण, तू भी पंडित मैं भी पंडित, जे असीं एक दूजे दे काम नहीं आवांगे ते होर कौन आएगा, तू मैनू पार ले चल। कहिंदा नहीं हो सकता। सानू गुरु नानक पातशाह ने ख्याल बड़ा सुंदर दिता है, कहिंदा देखो गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन न जाई, गऊ ते ब्राह्मण नू एक कर ला लिया टैक्स मसूल ला लिया, पर जिस वेले दे कोल ना दिता गया एक पासे रुख दी छावें की बह गया। होया कि कुछ देर बाद गऊ ने गोबर कीता, एक कर लाण वाला उठ के की करदा, उसे गोबर नूं चुक के लियाया अपना चौंका पवित्र करन लग पिया, अपना चौंका पवित्र करन लग पिया। सतगुरु कहिंदे ने मरदानिया वेख इह उही गऊ है, उही ब्राह्मण है जिसनों एक करते टैक्स ला लिया है, पर ओदे गोबर दे नाल ए तरना चाहता है, ए तरना चाहता है कि ऐसा हो सकता है। गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन न जाई, भाई इस गोबर दे नाल नहीं तरिया जाना, कि उस गोबर दा तू पोचा ला के अपने चौंके नु पवित्र कर लवें ते कभी इंज तर जांगा, सतगुरु कहिंदे ने नहीं। पर कीता इसने की है, धोती टिक्का तै जब माली धान मले छा खाई, धोती टिक्का तै जब माली, धोती लाई है टिक्का लाया कान विच रयोग पाया है, जब माली हाथ विच माला भी फड़ी है, लेकिन कम की है धान मले छा खाई। फिर करदा की है, अंतर पूजा पड़े कते पा संजम तुरका भाई, अंतर पूजा पढ़दा की कतेब वेद, कहिंदे अंतर पूजा पड़े कतेबा मुसलमाना दी मतदा ते संजम तुरका भाई, संजम भी कहिंदे उन्हां वर्गा ही रखिया होया। अंत भी सतगुरु ने गल कमाल नहीं कर दी, कह लगे पंडित जी ब्राह्मण जी मेरी गल ध्यान में सुन लो, अंतर पूजा पड़े कतेबा संजम तुरका भाई छोटी ले पखंडा, पंडित जी ये पखंड छड़ दे, इस पखंड दे नाल इस अडंबर नाल तुसी नहीं तर सकते, हां अगर तरने ते की करो छोटी

नाम तेरो आ सुनो, हे मेरे ठाकुर बैठल वाहिगुरु, जिहड़ा पंडित ने आसन लाया है ना, मैं तेरे नाम का ही आसन बनाया है। नाम तेरो आ सुनो, मैं उस नाम नु आसन समझना। नाम तेरो उरसा, उरसा कहते ने बड्डी नु जिहदे नाल किस रगड़िया जाता है। नाम तेरो उरसा, फिर कहते नाम तेरो केसरो लै छिड़कार है, कहते नहीं वो केसर रगड़ के तेरे उत्ते छिड़का करते ने ना, मैं तेरे उत्ते नाम का ही केसर छिड़क देता है। मैं सब कुछ नाम नहीं समझे। अगे भगत जी कमाल की गल कहते हैं।

सैव जी कहने लगे किदे जोगा आपको सतनाम श्री वाहे किदे जोगा है जो? कोई मां प्यो जोगा होता है, कोई अपने आप जोगा, कोई दुनिया जोगा, कोई देश कौम जोगा, तू किदे जोगा है? जेड़े प्यार नाल गुरु साहब ने पूछया बच्चे दे कर्म देखो।

जे तू मेरे जोगा नाम ही होवेगा मैं ता भी तेरे जोगा होवांगा आखो सतनाम श्री वाहे संबंध बन गया संबंध भी ऐसा बचपन बीत गया जवानी आ गई ते जोगा सिंह ने भी अमृत छक लिया गुरु नाल बड़ा प्यार करता है जोगा सिंह दे माता पिता आए कहन लगे महाराज जोगा सिंह नु हुण आगे आ दियो इस नु कर ले जाइए इसका ब्याह कर दी गुरु साहब ने आग्ञा दे दी ते नाल किया जोगा सिंह भाई जा मापियां दी सदर है ओ तेरा व्याह करन जा मापियां दा चा पूरा कर ते जोगा सिंह कहन लगा महाराज जे मैं चला गया ते तुहाडी सेवा कौन करेगा आखो सतनाम सेवा सतगुरु कहन लगे जोगा सिंह जदू तू नहीं सी सेवा उदो भी होती सी तू चला जाएगा सेवा फिर भी हो गई तू साडा फिक्र ना कर जा मापियां दा चा पूरा कर मथा टेकया तुर पिया पर जांदा जांदा कह गया बादशाह जदू मेरी लोड़ पवे मैनू बुला लेना आखो सतनाम।

चौकीदार खड़ा देखे यार। थोड़ी जी संगा आई तो जोगा सिंह आगे चला गया, चक्कर काट के आना पहरेदार हट जाएगा, फिर वेसवा दे चुबारे चढ़ांगा, पर सात संगत कौन है चौकीदार, कलगियां वाला साधु जिड़ा आया ही रखिया करने वास्ते है।

अगर गुरु ने सानू कुछ दिता है उसनु संभालिए गवाइए ना आपसे ईर्खा दुर्दा आपसे नफरत छड़ के छोटिया मोटिया गल्ला छड़ के मना विच प्यार रखिए और सच जानना जिना हिरदा विच प्यार नहीं जिना दे मना विच प्यार नहीं उना दे घरां विच प्यार नहीं जिना घरां विच प्यार नहीं वो घर नहीं वो फिर शमशान होते हैं क्यों घर चंगे समान नाल चंगे फर्नीचर नाल चंगे सख मरमर लगाण नाल घर नहीं बनता घर बनता प्यार नाल इतफाक नाल घर वो है जिथे मापिया का आदर मान है घर वो है जिथे एक दूसरे की गल मनी जाती है घर वो है जिथे नाम बाणी का प्रवाह चलता है घर वो है जिथे एक दूसरे नू जी कह के बुलाया जाता है घर वो है

सच, सच्ची वाणी और सच्चा इतिहास। शब्द ने पढ़िया ते नाल कथा तो पता भी लग गया कि मैं सतगुरु

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोनों दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया बड़े हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे कि किस तरह दी मित्रता सी। भाई साहब फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू होई बामणी मिल जगदीस दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उन्हां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन सुख दिंदे हन, ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इसनूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, ए सताउंदा है बाल सखाई मित्र, ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नूं ब्राह्मणी कहा है, कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ए सुदामा तू जगदीश नूं मिलते सही ओ तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नूं दसदे होए अगे फरमान करदे हन।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नू सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नू होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन। अंतरयामी भगवान कृष्ण दूरों सुदामे नू देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाईसा फरमान करदे हन,

भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं वधे। कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा ले रहे हन, और प्रदक्षिणा लेके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पै के सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होने दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे ले रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लैके पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लैके सिंघासन वल वधे।

साहेब कलगीधर पातशाह अकाल पुरख वाहेगुरु दी उस्तुति कर देन पाहे गए जब ते तुमरे। हे अकाल पुरख वाहेगुरु, जदों तो मैं तेरे चरण फड़े हन, तेरे चरणा नाल जुड़िया हां, फिर मेरी निगाह तले होर कोई पीर पैगंबर औलिया नहीं आया, क्योंकि कोई तेरे वर्गा होवे ते तां आवे न। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने। जदों तो मैं तेरे चरणा नाल जुड़िया, मैं न गणेश प्रथम मनाऊं, किशन बिशन कबहू न त्याऊं, कान सुने पहचान न तिन स्यों, लिव लागी मोरी पगियन स्यों। हे अकाल पुरख, जदों तो तेरे चरणा नाल लिव लगी है, फिर मेरी नजर तले होर कोई नहीं आया, कोई तेरे वर्गा होर है ही नहीं। मेर करो त्रिन ते मोहि जाए, गरीब निवाज ना दूसर तो सो। 14 लोकां विच तेरे वर्गा कोई गरीब निवाज नहीं।

पंक्ति दे अंदर जरा सोचो कि सतगुरु ने की भेद रखिया। एक बेबल होई होई जीव रूप स्त्री सतगुरु दे चरणा च अरदास करदी है, सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने इसका नक्शा बड़ा सुंदर खिंचया है। पंक्तियां दोनों का डिस्टेंस है भावे, पर फासला जरूर है, पर अंत जड़ा है ना, शब्द का प्यार, शब्द की मिलावट, शब्द का संग्रह गरीब नवाज सचे पातशाह ने इथे आके किया। जीव प्राण सुख दात्या निमख निमख बलहार जियो, क्योंकि दयु गसाई मीतला तू संग हमारे बात। एदा मतलब ए होया भई सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह ने जेड़े शब्द की पंक्ति लिखी है ना, इसका भाव बड़ा गहरा है। भई हो अकाल पुरख महाराज, हे निरंकार, हे प्यारे पति गुरुदेव, हे मालिक, हे स्वामी, हे मेरे प्यारे महबूब, दुनिया दे रचनहार दाता, तू साडे संग रहिंदा सैं, साडे नाल जीउंदा सैं, साडे नाल नाल चलदा सैं, साडे घर दे अंदर तेरा निवास सी, तेरा साडे घर दे अंदर वासा सी, साडे सिर उपर तेरा हथ सी। गरीब नवाज सचे पातशाह पता नहीं की कारण होया तू साथों विछड़ गया, तू साडे घर विचों चला गया, सतगुरा तू साडे घर विच नहीं रहा, तेरा हथ साडे सिर उपर नहीं रहा, मेहरबान गुसाई तेरी कृपा साडे घर अंदर नहीं रही। बड़ा समा हो गया दर्शन कीते हैं, तू तो साडे नाल रहिंदा सैं, कोई गल ते दस, नाराज क्यों होया? नाराजगी है कुल दस, केड़ी नाराजगी है, की भुल होई है, की गलती होई है? जीव रूप स्त्री भी अपने पति दे चरणा च अरदास करदी ना, महाराज स्वामी मालिक प्यारे पति गुरुदेव जीओ, की भुल होई है, नाराज हो गए, मुंह फेर के बैठे होयो, की गल होई? करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी, हां वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। किड्डी बेबलता दी अवस्था है, किड्डी विछोड़े दी अवस्था है, किड्डी बैराग दी अवस्था है। कहंदे कलवत ते सिर दे उपर धरिया जावे, शरीर आरे नाल दो फाड़ हो जावे, मैनू मंजूर है, पर हे प्यारे पति, हे प्यारे गुरुदेव, हे प्यारे मालिक, तेरी पिठ तेरा मुंह परले पासे सानू परवान नहीं। करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बेनती मेरी, हमारी मुख फेर प्यारे, करवट दे। तू मैनू मारना ते उदा ही गला घुट के मार दे ना, मैनू करवट दे के, मैनू पिठ दे के क्यों मार रहे हैं? क्यों परां नू मुंह करके मैनू मार रहे हैं? क्यों नाराज होके मार रहे हैं? सतगुरा नाराज ना हो, तू संग हमारे बास जियो, तू साडे संग रह, साडे घर अंदर रह, तेरी सेवा करिए, तेरे चरणा दी पूजा करिए, तेरे चरणा नू चुमिए, तेरे चरणा नू दोनों वक्त पखारिए दाता। पर गल ते दस ना, नाराज क्यों होया, गया क्यों है करो? जी प्राण सुख दात्या निमख निमख बलहार जियो, ओ प्राण दे मालक पति जियो देन वाले दाता, तेरे तो ते एक एक खिन मारने जाने आ, दिन दे अंदर लखां वार नी, करोड़ां वार नी, जितने शरीर दे रोम ने बार बार तेथों बलहार जाने आ। पर कारण दस, रीजन दस की है? शब्द दा गहरा भाव ए, तुद बिन घड़ी ना जीवना, त्रिग्रह ना संसार, कोई प्यारा यार विछड़ जावे, रुस जावे, पुत्र प्यो कोलो रुस जावे, मां पासो रुस जावे, भैन भरावां नाल रुस जावे, प्यारा दोस्त दोस्त नाल रुस जावे, जिंदगी जड़ी है वियोग योग हो जांदी है, हालत बेहबल हो जांदी है, मच्छी दे तरह तड़पण लगदा है, सिख गुरु नाल विछड़ जावे ते ओ कहंदा त्रिग रहना संसार, तुझ बिन घड़ी ना जीवना, त्रिग रहना संसार, मौत दे दे, संसार च रहना प्रमाण नहीं। प्यार दी हालत सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह ने वर्णन कीती है। आप जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूप
जिन्हां दी सेवा आप जी ने अपने हथी बुधवार कीती है ना, इतनी उम्मीद नहीं सी भाई संगत इतनी आ जाएगी, क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं सी होई, संगत नूं पता ही नहीं सी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पवित्र स्वरूप सवारे सचखंड विखे विराजमान करने ने। पर जदों देखिया ना शाम नूं कीर्तन दे विच दीवान दे विच रात नूं ते संगत इउं हाजिर होई जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह लखी जंगल अंदर जांदे ने, ते लखी जंगल दे अंदर जाके चौंकड़ा मार के बह जांदा मेरा प्यारा चोजी प्रीतम, लखी जंगल खालसा आए दीदार लगो ने, सुन के सद माही दा मेही पानी मह घतो ने। ज्यो ज्यो आवाज कन्ना अंदर पई प्यारा महबूब आनंदपुर साहब तो कलगिया वाला चोजी प्रीतम आया, ते कहंदे वी जिवें मझां पानी दियां प्यासियां किले तड़ा के भज जान ना, किले पुट के भज जान, संगल तड़ा के भज जान, इकट्ठियां हो जान पानी दे ढाब दे उपर। अरे चोजी प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह साहब सचे पातशाह महाराज दे सुन के सद माही दा मेही पानी मां कतो ने, आले दुआले संगतां इकट्ठियां हो गई, प्यासियां संगतां इकट्ठियां हो गई दर्शना दे सिक ना। बुधवार की रात भी इउं होया, दीवान सजिया, संगतां इकट्ठियां हुंदियां चलियां गईयां, भोग पैण तो बाद संगत इतनी एकत्र हो गई कि गिनती बेअंतता तक पहुंच गई, गिनती नहीं सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन स्वरूप अपने धन भाग समझदियां होया सिख संगतां लाइन च लगियां, सीस उपर चुकण वास्ते बेबल सन। माइयां बीबियां ने बड़े प्यार नाल सेवा कीती, बड़े अदब सत्कार नाल सेवा कीती। प्यारे वीर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा स्वरूप सिर ते चुकण वास्ते उतावले लैण विच खड़े होए ने, प्यासे खड़े होए ने, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा स्वरूप सेवा नहीं मिल रही, पर हाथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे दर्शन कर रहे ने। कैसी प्यार वाली हालत सी, कितनी आनंद वाली हालत सी, कितनी आनंदमयी हालत सी। छोटे छोटे बच्चे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पवित्र स्वरूप लिजा रहे सन। जिहड़े मरीज तीन मंजिल शायद ना ही चढ़ सकन ओ भी चढ़े, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पवित्र स्वरूप नूं लै लै के। बड़े धन भाग उन्हां सजना महापुरखां दे होए जिन्हां ने ए सेवा लई है, जिन्हां दे सीस दे उपरों ए सेवा गई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी प्रसन्न हो गए, वड्डियां भागां वाले ओ सेवक जिन्हां दी सेवा लग गई, जिन्हां दी सेवा ना लगी ओ भी वड्डियां भागां वाले हन। सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह उन्हां नूं भी मौका बख्शणगे, भाग बख्शणगे, सुभाग बख्शणगे उन्हां नूं भी, उन्हां दी भी सेवा सतगुरु दे दर ते प्रवान है, क्योंकि उन्हां नूं पता ही नहीं सी भाई अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी सेवा करनी। जे उन्हां नूं पता हुंदा ते ओह भी जरूर हाजिर हुंदे। सेवा सारिआं दी दर प्रवान है, सारिआं दी लेखे च लगी है, पर प्यार वारी हालत उस समय वेख के मन अंदर एक बैराग जागदा सी, सतगुरा ये ते लखी जंगल वाला नक्शा बन गया, सिख संगतां नूं पता लगा वी पावन स्वरूप पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आए ने, ते संगतां ताके पहुंच गईयां ने। कैसे प्यार वाली हालत है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पवित्र स्वरूप साडे पास मौजूद हन। आप जी ने हुण श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पवित्र स्वरूप अपने घर दे अंदर लिजा के उन्हां दे प्रकाश करने ने। प्यार अदब सत्कार नाल गुरु नूं घर विच लिजाणा, दयु गुसाई मितला तू संघ हमारे वास, अपने संग गुरु अकाल पुरख महाराज नूं वसाओ ताकि जीवन सफल हो जाए। उस तों बगैर ते मच्छी वाली हालत हो जांदी है, जिवें पानी नालों मच्छी निखड़ जाए। तुद बिन घड़ी ना जीवना त्रिग रहना संसार, असीं पता नहीं किवें जीव रहे हां गुरु तो बगैर। इस करके सतगुरु अगे अरदास करिए, गरीब नवाज कृपा कर दाता, प्यार बख्श, सेवा बख्श चरणा दी, ते साडे नाल रह, नाराजगियां छड, सानू दस भी तुहाडे अंदर औगण ने इन्हां नूं त्यागो, ते असीं त्यागदे चले जावांगे। प्रण करदे जाइए ना ते गुरु महाराज हाजिर होणगे, जरूर घर विच आके वसणगे। साडियां ऊंटाइयां, साडियां गलतियां, साडे भुलेखे, साडियां भुल्लां नूं वेख के गुरु नाराज हो गया, घर विचों चला गया, नहीं ते घर विच ही सी, असीं उस दे घर दे विच बैठे होए दी सेवा नहीं कीती। ओह निवेकला बैठा होया सी, असीं अपने कमरे विच निवेकले बैठे होए सां, अलग अलग बैठे होए सां, गुरु घर विच बैठा।
सानू पता ही नहीं ये गुरु है। इस करके जे गुरु घर विच है ते उसनू प्यार नाल उसकी श्रद्धा दे नाल सेवा करो, श्रद्धा दे नाल गुरु की पूजा करो ताकि जीवन सफल हो जावे, साडियां जिंदगी दियां कुछ घड़ियां गुरु के लेखे लग जान। सतगुरु बड़ी बेबल अवस्था विच

मैं तेरी पग बन ली है, तू मेरी पग बन ली। ते सिर ते बनी पग नू इज्जत भी समझिया जांदा है कि अज तू तेरी इज्जत मेरी है, मेरी इज्जत तेरी। जदों भी कोई भरा बनदा है आम पगां वटा के पगवट भरा बनदे ने, तो गुरु साहिब जी बाणी विच भी कहंदे ने साबत सूरत दस्तार सिरा दस्तार

साहब दे दरबार विच सन। हिंदुस्तान ते उस वक्त जहांगीर दा राज सी। तख्त दो एक तख्त ते गुरु हरगोबिंद साहब बैठे।

तीन पैसे पलियों खोल के हाथ विच फड़ ले ने। जहांगीर अपने पलंग ते बैठे कोल एदी बेगम नूर जहां बैठी। तंबू च पैर पाया पर मन नू खिच ना पई। हुण पग जहांगीर दे सिर ते भी है, कलगी भी लगी है, क्योंकि बादशाह इसने तीन पैसे बादशाह दे अगे रखे, मथा टेकिया, हाथ जोड़ के कहन लगा, सच्चे बादशाह मेरा जन्म मरण स्वार दे। जहांगीर हैरान होके इस काई दा मुंह देखन लग पिया ते नाले किया, मैं ते बादशाह हां हिंदुस्तान दा, जन्म मरण मैं नहीं सवार सकदा। हां जे तू कवें हेरे जवाहरात महल माड़ियां मैं तेनू दे सकदा। उसने किया ना हीरे जवाहरात चाहिए ना महल माड़ियां, बस जन्म मरण सवार दे। जहांगीर कहन लगा जन्म मरण सवारना मेरे हाथ नहीं, जन्म मरण

मैनू माया नहीं चाहिए, मैनू ते परमेश्वर दी मेर दी निगाह चाहिदी। ते वापस मुड़ पे तंबू दे बाहर आया, अचानक ख्याल आया, एक आई सिख वापस मुड़िया जहांगीर दे कोल आया, जेड़े तीन पैसे रख के मथा टेकिया सी, वो तीन पैसे चुक के ते फिर

बादशाह पर सिख ने मेरी कीमत तीन पैसे भी नहीं पाई। दुनिया मेरे को डरती है कि मैं बादशाह, पर वो डरते ने जेड़े खुशामदी ने। जहांगीर सोचता पे उधरों सिख दूसरे तंबू वाल तुर पे आ। गुरु हरगोबिंद साहब अपने आसन ते बैठे ने, संगता बैठिया ने ते कीर्तन हो रहे। तंबू च पैर पाया मन खिचिया गया, क्यों महापुरुषा नु मिलिए ता मन जिड़ा है वैराग विच आ जांदा है, श्रद्धा विच आ जांदा है। किस दुनियावी आदमी नु मिलिए ते मन विच प्यार नहीं आता। इस सिख ने गुरु साहिबां दे दर्शन किए, कहन की लोड़ ही ना पई कि जन्म मरण सवार दियो। साहिबां दे चरणा ते वो तीन पैसे रख के मत्था टेकिया, बिना मंगिया

पुरख सवा एक अकाल पुरख तो सवा किसे होर अगे नहीं चुकनी चाहिए। जेड़ा सिर किसे होर दे अगे चुक जावे, दुनिया अगे चुक जावे, वो सिर फिर परमेश्वर दे अगे चुकाण दे लायक नहीं रहिंदा। सिर चुकाना है परमेश्वर अगे चुकाओ जिस दुनिया बनाई है, क्यों कि वो उच्चा है, जेड़ा ओदे नाल लगदा है वो भी।

गुरु साहिबां नालों विछड़ गए। सरहंद दे नवाब ने माता गुजरी जी नूं अते छोटे साहिबजादियां नूं सरहंद ठंडे बोरी दे विच

गर्म कपड़ा भी कोल कोई नहीं, पर फिर भी मन ना डोल रहे है ते ना ही मन डिगा होया। क्यों के जेड़े उच्चे होंदे ने हमेशा उच्चे रहंदे ने, ओ कदी झुकदे या टुटदे नहीं।

ना घबराए, चेहरे ते दृढ़ता है, डर दा कोई नाम निशान नहीं। इटा लगदियां गईयां छोटे साहबजादे दे।

तेरे तेने गुण ने तू इनी बाणी पढ़दा है शस्त्र विद्या भी सिखदा पिया गुरबाणी की विद्या भी सिखदा पिया एक गल दस संगत दे झूठे कौले क्यों मांज रहे हैं क्यों मांज रहे ध्यान देना ये बड़ी गुण जड़ा ना यह माधो साधु जन दो मिला।

फिर वचन सुनाया बाबा ईशर सिंह कहंदे एक बारी बाबा जी एक गुरुद्वारे वाल उंगल करके कहन लगे कितना सोहना बनिया है। बाबा ईशर सिंह जी कहंदे मैं अगों कहता हां जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। कहंदे ये हुण असीं बोल नहीं सकदे, उन्होंने आख्या बाबा ईशर सिंह जी कहंदे सानू ताड़ करके चपेड़ पई।

0: खालसा जी और सब तो पहला गुरु साहिबां दा बख्शा फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: समय समय दियां जालम सरकारां सिंघां सरदारां नूं खत्म करन दियां कोझियां चालां खेड़दियां रहियां हन पर सिख कौम हमेशा चढ़दी कला विच रही है। सन 1726 ईस्वी नूं जकरिया खान पंजाब दा गवर्नर बनिया। पंजाब दी बागडोर संभालदियां ही उसने पंजाब दे पहले जालम हाकमां दे पद चिन्हां ते चलदियां होयां सिख कौम नूं अपना निशाना बना लिया। उसने सिंघां दे सिरां दे मुल रख दिते अते हुक्म जारी कर दिता कि जेड़ा सिंह दी दस पावे फड़ावे जां मार के लियावे तां उस नूं शाही खजाने विचों इनाम दिता जावेगा। इस फरमान ने पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी बना दिता। कई निर्दोष सिंघां नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। इनाम ते चौधर दे पुख्या ने कई संत महात्मा सिख फड़वाए अते मरवाए। मुक्ति गल लाहौर दे सूबे विच सिंघां दा रहना मुश्किल हो गया। समय दी हालत नूं वेखदिया होया सिंघां ने जंगलां बेलियां विच लुक छिप के रहना शुरू कर दिता। जदों इन्हां जालमां नूं कोई भी सिंह नजर ना आया तां फौज ने अपने हाकमां नूं सिंघां दे खात्मे दी इतला बड़े फकर नाल हे